मैं कुछ भी कर लूं, तुम कभी मुझसे मोहब्बत नहीं करना चाहती, और तुम कुछ भी कर लो, मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर सकता।

बाबा आप ही ने मुझे बचपन से सिखाया है, जो चीज मैं हासिल ना कर सकूं उसे जला दूं। लेकिन इस बार आपके बेटे को जो चाहिए वो या तो मैं हासिल कर लूंगा या खुद को जला दूंगा।

खबर आई, युद्ध जारी है, काफी कठिन परिस्थिति। आपका प्रेम और आपकी तपस्या शायद उन्हें जल्दी वापस ले।

0: It's 8:40 on the clock.
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

आप और हम मिट जाए हमें कोई गम नहीं, लेकिन हीरा मंडी का वजूद मिट जाए ये हमें मंजूर नहीं।